कोई किसी रंग विच है, कोई अमली है, कोई शराबी है। बाबा जी कहते ने आप नहीं, उस वाहिगुरु ने रंग दिते हैं, पर ये रंग सारे कच्चे हैं। एक होर पक्का रंग है, वो केड़ा मेरे पातशाह करते।

बड़ी उच्ची सोचनी है। आखिर पंडित जी ए पत्थर इन्हों के मुंह च खीर पा रहा है, खान गए तनिया इंजनी आखी का। तेन की पता, तू तो सिर्फ जिम्मेदार है, तेन की पता के पत्थर नहीं हन, होर की हन। पंडित जी मेहनत तो पत्थर ही जापते ने, नहीं तनिया पत्थर नहीं हन, ये ठाकर हन। पंडित जी ठाकर की होंदा है? तनिया मैं तेन कि मैं समझावा, ये पत्थर नहीं। जे तेन आख्या जे तेरा मन ही मन गया है पत्थर नहीं कि ठाकर हन, फिर तू आखदे ठाकर की हुंदा है? ना पंडित जी, फिर मैं दस के देवो ठाकर की हुंदा है। तनिया ठाकर वो है जिस दे आसरे ते सारा संसार है।

सूही महला पंजवा राग सूही शब्द भी सूही कीर्तन भी सेव सूही में शब्द है लाल रावया कमल गतिरी सखी बतावो मुझे मुझे

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के, इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की कम कीता है भाई। गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जागा है, तेनू शरीर मिलिया सी, उस शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेनू दिता सी, इस दे नाल तू कुछ खास पाउना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ए इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल, इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत।

श्रीर सरोवर पीतरे, श्रीर सरोवर दे अंदर। कल दे कीर्तन च असीं विचारिया सी ना कि महाराज जी वो जिहड़ी वस्तु पानी है वह है कित्थे, वह कित्थे है? कहिंदे हन अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पाल। वो निधान, वो खजाना, वो दौलत, वो बादशाहत कहिंदे तेरे अंदर है। अज महाराज सरोवर की सिमली दे के कह रहे हैं कि शरीर सरोवर पीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है अच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत अच्छा है। कमल अनूप, अनूप का मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरल्ड। कहिंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है तो सानू पता ही नहीं साड़ा शरीर की है, इस दे विच की शरीर सरोवर दे अंदर। कहिंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुलां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हैं कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा महाराज होर की है? कहिंदे परम जोत, ओ जोत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, परम जोत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम जोत, पुरखोत्तमो, पुरखां दा भी पुरख, पुरख ओतम, अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तमाम नारियां नू पुरखां नू पैदा करन वाला पुरख है, ओ परम जोत पुरख ओतमो जांके रेख ना रूप, जिसकी कोई शकल नहीं नजर आती, जिसका कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है। कहिंदे जांके रेख ना रूप, ओ इस शरीर रूपी सरोवर दे विच। सो हुण सारे इस पंक्ति दास तो बाद अद्धे दे हिस्से च बोलियो, ताकि असी अज ए नुक्ता लैके जाइए कि कमाल दी गल है, असी ते सरोवर बार संगमरमर दे नाल बने हुए पानी दे नाल भरे होयां नूं ही सरोवर समझदे रहे हां, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे शरीर नूं सरोवर आख रहे हां। कहिंदे हन शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे अच्छा कमल अनूप, परम ज्योत पुरख ओतमो जांके रेख न रूप। सो ए शरीर एक ओ वस्तु है जो कि शरीर एक सरोवर है, इस सरोवर दे विच रब रूप कमल है, अते इस शरीर रूपी सरोवर दे विच ओ परम ज्योत है, ओ पुरख उत्तम है, पुरखां दा पुरख है, जिसकी कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है, फॉर्मलेसनेस दे विच है। तो असा ने अपने इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर जाके इशनान करके, इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर इशनान करना है, शरीर दे अंदर जाना है, अते इस शरीर दी अंदर दी दुनिया जो है, अंदर दा जगत जो है, उस दे विच प्रवेश करके फिर ओ जो रब रूप कमल है उसनु प्राप्त करना है। और जो ही असी उस कमल दे दीदार करते हैं, वो कमल सुगंधी दे नाल, खूबसूरती दे नाल ब्लूम कर रहा है, खिलिया पिया है, अते उस दे नाल जो साड़ी जिंदगी है वो कमल दे फुल वर्गी हो जाती है। अंदर
कमल फुलां दा बगीचा लग जांदा है, अंदर एक बाग खिल जांदा है। तो ये सत पॉइंट आप जी की सेवा दे विच रखे हैं। अगले छे जो हैं वो कल तो असी आरंभ करांगे और असी इन्हां नूं नोट कर लईए ताकि सानू ये पता होवे कि शरीर की वस्तु है। ये दुर्लभ है, ये मंदर है, ये रब की कामणी है, ये एक घोड़ी है जिस दे राही असी अपनी यात्रा नूं तय करना है। ये सब तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो सारे ब्रह्मांड दे विच है वो इस दे विच है। अते ए एक सरोवर है जिस दे विच रब रूप कमल खिलिया पिया है। असी की कीता है, साड़ी ट्रेजडी की है कि ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। शरीर दे विच ऐबां दा, एडिक्शंस दा, स्वादां दा, बुरियां आदतां दा चिकड़ कर लिया है ते मन बस उस चिकड़ चो ही नहीं निकल सकिया, अगा कमल तक पहुंचे ही नहीं है। कमल की सार नहीं मूल पाई, कमल दी सार ही नहीं पाई। अगले छे नुक्ते आप जी की सेवा च अर्ज करन तो बाद फिर आप जी सेवा च जो कीर्तन होणगे ओ होणगे कि उस कमल तक असी किवें पहुंचना है, उसके ढंग की हैं, उस दीआं विधियां की हैं। उस कमल नूं खिलाण दे वास्ते कि वो खिले उस दीआं की रिक्वायरमेंट सन, यह कीर्तन आन वाले दिनां दे विच होणगे। आप जी इसे तरह दर्शन दिओ टाइम सिर ताकि इस लड़ी नूं असी जो है गुरु बाबा जी की कृपा दे नाल संपूर्ण कर सकीए, शरीर नूं जान सकीए ते शरीर दे अंदर जो है उस नूं जान जाइए ते उसका रस्ता समझ लईए पे उसे तक किवें पहुंचना है। बस साडी समझ लो मंजिल पूरी होगी, साडा जीवन सफला हो जाएगा। फिर मैं रिपीट करा, शरीर नूं समझ लईए और शरीर नूं समझन तो बाद इस नूं सानू साधना पैना है, इस नूं सानू फिर कढ़ना पैना है, इस दे विच चेंजेस लियानियां पैनियां हैं, इस दे विच कई सारियां तब्दीलियां लियानियां पैनियां हैं। महाराज जी आखदे हन तरत काया साध के, ये धरती रूपी काया नूं साधना पैना है। इस उते बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत करनी पैनी है, वो सारा कुछ अगले कीर्तना दे विच आएगा। जदों असीं शरीर नूं समझ लवांगे इस नूं साधना किवें है वह समझ लवांगे, इस शरीर के अंदर की है वह समझ लवांगे, उस तक पहुंचने का रस्ता की है वह सुन लवांगे, समझ लवांगे, उस तों बाद असी उस अंदरले जगत की खूबसूरती नूं एक्सप्लोर कर लवांगे। अते जो अंदर साडे वस्तु नूं पाउण नूं महाराज ने कहा है उस नूं असी पा लवांगे, जीवन की यात्रा साडी सफल हो जाएगी। भूल चुक दिखेवा प्रेम नाल इस पंक्ति नूं गाओ, ए शरीरा मेरिया इस जग

सिर्फ मिठिया ही स्वीट चीजा ही नहीं, होर बहुत सारिया चीजा जो प्यारियां लगदिया स्वादलियां लगदिया कहते मिठिया समझ के उन्होंने खाया, पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्होंने रिजल्ट जो है अखीर दे जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विच कुड़त्तन निकली, शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर में ही वह भोगना पै गया, भोगंग तरोगंग, शरीर ने ही भोगां दी मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं, भोगंग तरोगंग, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करदा है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करदा हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदो बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हैं, कहते हैं जे सौ वरिया मिठा खाए, कहते हैं

जितने भी शरीर वे रस हन उतने ही दुख लगते हैं। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच गृहस्थियों नूं खास करके गृहस्थियों नूं यह समझाया है कि जे तुसी गृहस्थी हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दित्ती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनिया वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी गृहस्थी हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां गृहस्थी लोग हाँ, असीं कोई साधु संत थोड़ो, अते अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लैंदे हां कि साडी सोशल लाइफ भी है, असीं गृहस्थी हाँ। हुण गुरु साहब गृहस्थी किस नूं कहिंदे हन इह नहीं असीं सुणिया, इह नहीं असीं सुणिया, असीं सिर्फ इन्ना ही सुणिया कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने गृहस्थ धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या, ऐ सुणिया, ठीक है ना। गुरु नानक साहब महाराज ने गृहस्थ धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे गृहस्थ धर्म नूं प्रवान किया ए दसना भी मुश्किल है, अते इस नूं मनना भी बड़ा मुश्किल है, ते सानू शायद किसी ने दसिया भी ना हो। गुरु बाबा जी दसते हैं कि ए गृहस्थी, जे तू सोचे कि गृहस्थी होने दे नाल तेनूं एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस्ट सन उन्हां नूं माणी जा, तैनूं कोई तपस्या करन दी, कंट्रोल करन दी, अपने उत्ते को मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि चूं तू गृहस्थी है इस करके यू आर अलाउड। वह कहिंदे ऐसी गल नहीं। हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी, कहिंदे

है गृहस्थी। इसके अर्थ सुनो, सोगृही जो निग्रह करे, कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्हें सेंसुअल प्लेजर्स दे उते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उते काबू पाए, इन्हों उते कंट्रोल करने का अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि ओ इन्हों इंद्रिया दे रसां दा गुलाम न रहे, क्योंकि जो इंद्रिया दे रसां दा ही गुलाम रह गया वह शरीर दे ही तल ते रह गया, ओ शरीर तो बॉडी तो अगा इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगा इवॉल्व नहीं होया उसनू द्वारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा, वो फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, द्वारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और ये भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, ये भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लेवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही ओ गृहस्थी है जेड़ा गृहस्थी हुंदियां होयां गृहस्थी विच रहिंदियां होयां की प्रैक्टिस करे अपनियां इन्हां इंद्रियां दे तमाम रसां नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, इन्हां नू जित लै।

सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल जाप और तप। जाप इस मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दिया, अपने बिहेवियर दिया, तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभाव हन, जितनी भी साड़ी लोअर नेचर है, पशुआ वाले सुभाव हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रिया उत्ते इना दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाने दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब, संजम दा मतलब कि ओ अपनी नीड्स नू कटावे, अपनी नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसनू उसने खरीदना ही। बहुत वाइजली अपनी नीड्स नू समझे, अते अपनी नीड्स नू वध तो वध सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे बहुत ब्यूटीफुल, एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही, सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है, जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करिए? कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। गृहस्थी ओ है जिस दे जीवन दे विच कहिंदे, जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनियां इंद्रियां नू कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओह ओदी तपस्या करदा है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जप तप संजम भिख्या करे, इस गल दी ओह वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है, कहिंदे ओ पुन दान दा एक मॉडल बन जाए, भाव पर उपकार अते सेवा, इस तो अलावा उसके शरीर का कोई मकसद ही ना रह जाए। शरीर तो यही कम लो। सो गिरही गंगा का नीर, कहिंदे ओ है असल गृहस्थी, अते गंगा दे नीर तो भी, गंगा दे जल तो भी ज्यादा वह पवित्र इंसान है। ऐ महाराज जी सानू साधना प्रैक्टिस दसदे हन, कहिंदे हन कोई भी अगर मैनू मेरे तन नू सफला करा दे, मैं अपना तन उसनू वेचण नू तैयार हां, प्यार नाल गाओ इसनू।

तो साड़ी विचार ये चल रहे थे कि असी महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों जो सानू तन मिलिया है इसकी सानू पूरी खबर नहीं है कि एक ही वस्तु है। इस दे नाल असी की करना है, इस दे विच की कुछ है, इसका सानू पूरा ज्ञान नहीं है। असी बेहोशी जिही दे विच अपना जीवन जो है वह गुजारी जाने। सो गुरु बाबा जी की बाणी दे विचों असा तन दे संबंध विच जो सानू ज्ञान विचार शब्दों के राही मिलते हैं वह असी समझना है। दो नुक्ते आप जी की सेवा च दास ने कल अर्ज किए से। नंबर एक, ये दुर्लभ है, इस तो वध की कीमती शाय कोई होर नहीं। नंबर दो, ये रब दा मंदिर है। आओ अज तीसरा नुक्ता आप जी सामने रखिए। गुरु साहब आखदे हन ये रब दी कामणी है, ये जिहड़ा शरीर है ये रब दी पत्नी है, रब दी कामणी है, अते उसने आप इसनू अपनी मर्जी दे नाल डिजाइन कीता है, आप उसनू उसने सुंदरताई बख्शी है, आप उसने इसनू सवारिया शंगारिया है। ये शरीर रब दी कामणी है, रब दी औरत है। तो अगर साढ़े पास ये है तो एक रब दी अमानत है, ये रब दी कामणी है। महाराज जी अपनी बाणी च आखते हैं

फिर सच्चे ते सदा सुहागन। कहिंदे इह काया जदों तक फिर इस दे नाल है ये सुहागण है, जदों तक सुहागण है इसनू कोई आंच नहीं आ सकती, इसनू कोई गम नहीं आ सकता, कोई दुख नहीं आ सकता, उदासी नहीं आ सकती, क्योंकि फिर जो नाल है पति नाल है। और कहिंदे अगर अपने जीवन दे विच इस काया रूपी कामणी नू इस दे पिर नालों विछोड़ दोगे, इस दे पिर तों दूर ले जाओगे, ये कहिंदे कुमला कुमला के मर जाएगी, ये उस विछोड़े नू सहार नहीं सकेगी, एक कुमला जाएगी, इसकी खूबसूरती टल जाएगी, ये बीमार पड़ जाएगी, ये उदास हो जाएगी, अते फिर ये पुकारेगी किथे गया मेरा साजन, किथे ले गए ये लोग मैनू, साजन देश विदेशी अड़े सानेड़े देंदी, सार संभाले तिन सजना मुंद नैण परहिंदी, ये मुंद ये जीव स्त्री ये रब दी कामणी इस दी अखां च फिर अथरू आणगे, ये फिर रोएगी, मुंद नैण परहिंदी गुण सारेंदी, उस पति नू मिलन दे वास्ते उस दे गुणा नू याद करदी है, अखां च इस दे अथरू हन, मुंद नैण परहिंदी गुण सारेंदी, क्यों प्रभ मिलां प्यारे, किवें अपने प्यारे नू वापस मिलां, क्योंकि इस नू भी तृप्ति नहीं आंदी, मुंद नैण परहिंदी गुण सारेंदी, क्यों प्रभ मिलां प्यारे, मार्ग पंथ ना जाणो बिखड़ा, क्यों पाईए प्रपारे, ना मैनू रस्ते दा पता है, ना पंथ दा पता है, रस्ते दीआं कठिनाइयां बड़ियां हन। ते कहिंदे हन इस जो सिमली नूं देण दा अर्थ यह है कि यह जो शरीर है असीं इसनूं यह समझना है कि यह रब दी औरत है और इस दा पति इस दे अंदर है, अगर कोई इस शरीर नूं इस दे पति तों अकाल पुरख वाहिगुरू तों दूर करेगा ते उस दे जीवन दे विच उदासी आएगी, विछोड़ा आएगा, गम आएगा, डिप्रेशन आएगा, दुख आएगा, अते रोना ही रोना आएगा, होर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि औरत नूं उस दे पति तों विछोड़ दिता जाए तो होर की हुंदा है, कहिंदे ओह कुमड़ा आ जाएगी, वो मर जाएगी, उस तो बिना उसका जो जीवन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो तीसरा नुक्ता अज आप दी सेवा दे विच रख्या है कि ए अकाल पुरख वाहिगुरु दी कामणी है, अकाल पुरख वाहिगुरु दी ए पत्नी है, ए उसकी औरत है, तो साडा अभ्यास की होना चाहिदा है कि असी अपने इस तन नू जो कि रब दी कामणी है कि वह वस्तुआं देईए जड़ियां इस नू वाहिगुरु तो दूर ले जान, वह वस्तुआं देईए जो इस नू गंदगी दे नाल भर दें, वह वस्तुआं देईए जो इसकी बुद्धि नू भ्रष्ट कर दें, वह वस्तुआं देईए जो इसकी बुद्धि दे विच बेहोशी लियां, इस नू असीं बेहोश करिए, ऐसा गुनाह फिर माफ कित्ते कीता जाएगा, फिर साडा फर्ज बनता है ये रब दी औरत है, इसनू जिस तरह रब ने बनाया उसे तरह ही असी रख के संवार के शिंगार के इसनू उसकी दुल्हन बना के रखिए, उस दे विच कोई ऑल्ट्रेशन करन दी सानू इजाजत नहीं है, क्योंकि द डिजाइन जो इसका है जिस तरह की उसने चाहे है उसने आप बनाया है, ये उसकी औरत, अते हमेशा इसनू उस वातावरण दे विच रखिए तां कि एक काया रूपी औरत अपने पति दे पिर दे नेड़े रहे, वो वातावरण की है, वो है सत्संग, वध तो वध सत्संग हो, और जितना असी इसनू सत्संग तो दूर ले जांगे उतना ही है अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर चली जाएगी, और जितनी दूर चली जाएगी उतनी ऐसा भी हो जाता है कि एक काया बहुत ही दूर गई गई फिर पिर नू भी भुलना शुरू कर जाती है, और जो अपने पिर नू ही भुल जाए पति नू ही भुल जाए उसका हश्र की होंदा है, बहुत भयानक हश्र होंदा है। सो एक एक नुक्ता इतना गहरा है कि गुरु साहब आखते हैं
ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਸਫਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਇਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਬਿਕਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤਨ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੇਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰੀ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭਿਖਿਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਭਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਪ ਦੇ ਅਤੇ ਤਪ ਦੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵੇ ਬਸ, ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ 13 ਨੁਕਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਵਿਛੋੜ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਕੁੰਬਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰੋਏਗੀ, ਇਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਫੂਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਓ।

कि नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती कि नहीं कया मैं कुले वडाई कि नहीं कया बां बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा कि नहीं भवन सब

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद अते दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण षाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

पांच जुगाद अना कला तारी तहलोए अगम निगम उदरण जला जमे आरो गुरु रविदास हे थपयो परगामी तारण तारण आगे अंतक बधे।

थोड़े दिन सतगुरु ने ना पाया, सतगुरु ने ना पाया, सतगुरु विच आप रखे अंतर प्रगट आप सुनाया, सतगुरु ने ऐसा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया।

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लैं के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द ते घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो, गुरु दी कला देखिए राग सारंग विच और आप जी चंगी तरह समझ के इस नूं सुनोगे, आप जी दे तन मन विच ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु दी बख्शिश और समय दा इह निचोड़ होवेगा। शब्द सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे तां इहदा ज्यादा लाभ होवेगा।

कबीर साहब कहते ने सब कुछ छड़ दिता है, तनना भी बुनना भी, हुण इको रब दा नाम है लिखिया होया अपने हिरदे ते। किड्डी वड्डी गल है, सब कुछ छड़ के मैं हरी दा नाम रब

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असीं अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं मैं अंधलहे की टेक

तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम दी स्टिक जो है, तेरे नाम दी जो छड़ी है, वो मेरा आसरा। पाप के तेरे नाम दी मेनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम दी छड़ी हाथ च होण तो बिना मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड़े हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम दी छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा। तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप को गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जाता, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी वाणी च आखते हैं

दुख, पेन, सफरिंग, मिजरी, ये कहते जहर है लाइफ जी, पॉइजन है। दुख मोहरा, मोहरा मैंने पॉइजन। जितने भी साड़ी लाइफ पेन है, मिजरी है, दर्द है, सफरिंग है, वो कहते जहर है। हुण उस जहर का इलाज की है, मारण लफज वरत्या है। मारण का मतलब हुंदा मसाले पाके दवाई जो तैयार की जावे, अर्ब्स वगैरह पाके जो दवाई तैयार की जावे, कहते उसनू मारण आखते। अगर पेन एंड सफरिंग लाइफ दे विच पॉइजन है, तो उस पॉइजन नू केड़ी चीज मार सकती है? बहुत ज्यादा ध्यान दो, ट्राई टू बी फोकस्ड। दुख मोहरा, दुख जहर है, उस जहर नू मारण दे वास्ते ए बड़िया इनकरेजिंग लाइन्स हन। इन दी सेंस कि जिस किसे इंसान दी जिंदगी च अत दुख है, सफरिंग है, मिजरीज हन, उदे वास्ते एक सोल्यूशन दस्या जा रहा है, एक वे आउट है, एक होपलेसनेस सिचुएशन दे विच एक होप दिखाई जा रही है। कि तुहानू वरीड होने की लोड़ नहीं, चिंता करने की लोड़ नहीं। अगर जिंदगी च पॉइजन आ गई है, दुख दर्द परेशानियां आ गई हैं, तो महाराज जी आखदे मारण, मारण का मतलब मसाले पाके कीती हुई तैयार दवाई, जड़ी दवाई है उस जहर नू मुका सकती है। कहते हैं वो है हर नाम, वाहिगुरु का नाम। दुख महारा मारण हर नाम, दुख नू मारण वाला, शक्ति रखण वाला एक ही पदार्थ है, वाहिगुरु का नाम। सो नानक के कारण सारे बोलो केवल नाम। इस पंक्ति नु याद करना है, वी विल गो ऑन रिपीटिंग दिस लाइन एवरी डे। नानक के कारण केवल नाम, तो मैं तो बात बोल दिया करो, कितने नाल कोई आप दिन थकावट नहीं हो जाएगी। नानक के कारण दुनिया दे विच बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है, बहुत ज्यादा डार्कनेस है, न समझी है, अज्ञानता है। तो महाराज जी ने पूछिए, महाराज इतनी अज्ञानता है, इतनी ना समझी है, इतना अंधेरा है, तो आप जी दे कोल की इंतजाम है इस अंधेरे नू दूर करन दा, चानन जगान दा? तो गुरु महाराज जी आखदे हन, दीवा मेरा एक नाम। कहिंदे नाम ही एक ओ दीवा है, जड़ा ह्यूमन लाइफ दे विच्चों डार्कनेस नू, सोसाइटी दे विच्चों डार्कनेस नू, पूरे ग्लोबल लेवल दे उत्ते डार्कनेस नू, इग्नोरेंस नू, इलिटरेसी नू जो दूर कर सकता है, वो सिर्फ नाम दा दीवा है। कहिंदे मैं नाम दा दीवा लेके आया। अते आप देखते हो जो दीवा बलदा है, तो आहिस्ता आहिस्ता केड़ी चीज है जड़ी बर्न हो जाती है, जड़ी सोक हो जाती है, जड़ी खत्म हुंदी है, वो तेल हुंदा है, तेल खत्म हुंदा जांदा है। महाराज जी आखदे ने साड़ी सारी जिंदगी दे जड़े दुख हन, उन्हां नू समझो तेल दे विच, नाम दा दीवा जगा दो, नाम दी बत्ती जगा दो, नाम दी बत्ती सारे ही दुखां नू बर्न करके रख देगी, जिस तरह जगदा होया दीवा तेल नू बर्न कर दिंदा है।

0: फिर महाराज जी ने पूछी, महाराज धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है, पूजा धूफ बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, तलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए। महाराज जी आखते हैं साडे घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं है, नाम जपना ही पूजा है। ए बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं, कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए,
0: नाम त्याना ही पूजा करना है, जो नाम नहीं त्याउंदा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, वो पूजा नहीं। पूजा उदो हुंदी है जदों किसी का नाम दिल च वस जाए, वो पूजा हुंदी है। कहते हैं साढ़े घर के पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है, कितना सिंपल है।

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। सो इतों अच समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असि नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं। अगर असि रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीचे नाम ते आइए बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां दे संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करन दे वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाउण दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजिस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसिस आख्या जांदा है। इज देयर इज सच थिंग? महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहते हैं तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो बहुत लोग वेद शास्त्र सिमरतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि तो असि भी वेद शास्त्र पुराण सिमरतियां आदि पढ़िए। महाराज ये आखते नहीं साढ़े वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना है, नाम जपना ही साढ़े वास्ते वेद और शास्त्र है। कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद, फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साढ़े ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

रब की पूजा भी साडे घर दे विच नाम जपना ही। अखीरली लंकी अखीरली जो पंक्ति है वो ते बहुत ही कमाल दी है कि गुरु महाराज जी ने यह आख्या है कि महाराज जी गुरु की सेवा किवें करिए, गुरु की सेवा किवें करिए। कहिंदे नाम जपना ही गुरु की सेवा भी है। जे तुसी नाम नहीं जपदे तो ओदा सब कुछ करदे हो, दिन रात मेहनत करदे हो। कईयां नूं हुंदा है कि सज्जन बहुत सेवा करदे, पर महाराज जी पंक्ति हुण सुणो।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां से सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने के नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चा उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी है, और किसे गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुनिया, भगत नामदेव जी आखते हैं, नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहिंदे मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं ओ ए कहिंदे हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गयो केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहिंदे साडे घर च सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं। नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उधरे सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहिंदे हन तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ इश्नान है, नाम जपना ही तीर्थ इश्नान है। कहिंदे नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा। सो ए है नाम की इंपॉर्टेंस। समा समाप्त है, आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक आते हैं। सो हुण तक असा यह सुनिया है कीर्तन का पहला हिस्सा के गुरु बाबा जी दे घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले दी टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम दी छड़ी तो बिना चलण दी कोशिश करदे हन ओ गिटे गोडे जरूर तड़ाणगे, ओ गिरणगे चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए अते गाइए, फिर कीर्तन दा थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन वृत्तियों जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार में अपने अंदर टिका के रखो जो सुने है। इतना कुछ सुनने तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगों नु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हां दा इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु दी सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिरेकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, एक किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान के अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिदी है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिदी है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिदी है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीख रहा नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

डाइजेस्ट करनी थोड़ी जी मुश्किल है। बिन नावे सब चोर, बिन नावे की आख्या है, आप आखो बिन नावे सब चोर, तो असि सारे ही चोर हैं। बिन नावे सब चोर, यू मस्ट राइट डाउन दिस समवेयर। बिन नावे सब चोर, जो नाम नहीं जपते वो भले इंसान नहीं हैं, वो चोर हैं। कोई आखे इंसान के मैं तो कोई चोरी नहीं करता, तो मैं चोर किमें हो गया? मैं अपना काम धंधा करता हाँ, नौकरी करता हाँ, दसा नहों की किरत करता हाँ, ये मैनू चोर किस तरह कह देता है? इसका जवाब कोई मंगेगा ही ना। मैं तो चोरी कभी की नहीं, किसी का एक सेंट नहीं चुराया, तो मैं चोर किमें हो गया? महाराज जी कहते हैं बिन नावे सब चोर, बिन नावे सब चोर। हुण किस तरह असी इस चीज का जवाब लभीए कि असी चोर किमें होए? सब चोर एक अद्धा नहीं, सारी दुनिया चोर है। चोर इस तरह है, दातां किसे दियां हैं? ये बना अपनियां लैंदा कि मेरियां हैं। किसे दी चीज नूं तुसी अपनी बना लो ते कहो ये मेरी है, फिर चोरी नहीं हुई तो होर की होया? किसे ने कोई गहना पहने होया है, तुसी किसे ना किसे टंग दे नाल उसनूं उतार के आप पहन लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? किसे दा घर संभाल लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? ये जीवन ही परमात्मा दा है, असी कहने मेरा है, माई लाइफ। When we say my life, असी इसनु फैब्रिकेट किया है, मैन्युफैक्चर किया है, इसनु बनाया है, क्रिएट किया है, then how come we can say this is my life? जब असी कहने मेरी जिंदगी, किसी चीज एक किसी वस्तु किसी होर दी है, लेकिन असी लाइफ नूं भी कह दिंदे आ कि ये मेरी है, जिसका सानू पता ही कुछ नहीं कि चीज की है, उसनों असी कहने मेरी है। ये चोरी नहीं है? ए तन इंसान सोचता मेरा है, भला इंसान नूं पूछे जाए तेरा किस तरह होया, कदों तू इसनों बनाया सी? तैनूं तां पता भी नहीं जदों ये बन रहा सी, ये तो किसी ने तेनू गिफ्ट दिती है। इस दा डिजाइनर कोई होर है, इस दा क्रिएटर कोई होर है, इस दे पिछे इंटेलिजेंस किसे दी होर है, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन नू चलान वाली विजडम कोई होर है, तू कहना मेरा है? ये किस तरह कह दिता मेरा है? ये क्यों नहीं कहता कि ये मैनू नहीं पता किस दा है? जिस दा है वही इसका मालक है, फिर तू ज्यादा सौखा होवेगा। पर महाराज जी कहते हैं प्राणी जाने ए तन मेरा, प्राणी कहता है तन मेरा है, वस्तु किसे होर दी है, लेकिन ये कहता है मेरी है, तो ये चोरी हो ही जाना हुई, चोरी हो ही जाना हुई। महाराज जी ने आख्या जाके रुख बिरख तन माल, ये जितने भी जितनी भी वनस्पति है, प्लांटेशन है, जिसनों असी अपनी इंडस्ट्री दे विच लैके आने पाव रॉ मटीरियल, ये सारे का सारा रॉ मटीरियल मटीरियल असी खुद बनाया है। लोहा, सोना, कोयला, रबड़ के दरख्त अते दरख्त जड़ लकड़ी पैदा करते हैं, फर्नीचर पैदा करते हैं, रॉक्स जिन्हों तो असी मार्बल लैके आने हाँ, वो असी आप पहला जाके बना के आए हैं। इंटायर वेल्थ जिहड़ी है छुपी पई वो परमात्मा की साजी हुई है, उसनू फिर बाद च लिया के असी आखदे मेरी है। ए चोरी नहीं हुई तो फिर होर की होया? जिहड़ा संत है वह यह कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है।